हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

0: Cultures Connect. CJMR 1320. The voice of the city.
1: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
1: क्या बात थी क्या।

0: अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंकती है।
1: पिंड टोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खानी कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

घड़ी न दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

लावल जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरियां ने, कुछ मेरियां ने। तेरा मिलना, तेरा विछड़ना, तू कदे परछावें तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा, तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्किया चीजा च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदा जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदा जीनी है किते ए नी दसिया। गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट EP एडिक्शन।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: मालूम है शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ